सुनीता ने प्रम्न सकपा जोधचंद्र सनसमना सैरेंगो मिटम इसई तभी रे अदम तभी रिबा साकस बनी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल नी।

0: दी ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: मखल मचल की तो अंधोगन बर थोरम सिंह दाबिरी बस या कस्बनी इम्फाल की FM संगाई चैनल नी सेनेल सिद हौजी कमो क्लान थुक्सरी सैसक पामा गी सैदा कोंग्राइलात पम दिने शर्मना सकप मतमिसे यमदि फिल्म से सिंग मथंग मथंग ओइना कुदुल गी अहन बद दाबिरसी सैथिंग अमना फिल्म से दगी लोक सबे से दिने शर्मा गी खुंजल दा अहन बिने सैरेंग बा गोपीना सेरंग बे से कुदुल तमजरी तमिनेसी

0: ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯗꯦꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯟꯖꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ, ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ, ꯀꯣꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯪ 2027 ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯪ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं, अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है।
0: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ-ꯑꯞ ꯁꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ-3ꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯕꯤꯚꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯡꯉꯨ ꯖꯨꯅꯤꯡꯂꯥ, ꯕꯤꯚꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇ꯭ꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ 43rd ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯪ 2020 ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯎꯄꯥꯗꯤ, ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯎꯄꯥꯗꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ. ꯀꯥꯡꯖꯝꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯚꯨꯁꯟ, ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯚꯨꯁꯟ, ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯄꯠꯃꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ, ꯀꯝꯂꯥ ꯁꯅꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯁꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯚꯛꯇꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯔꯝꯍꯟꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯖꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯟꯗ ꯒꯤꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯀꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨ ꯁꯝꯖꯦꯠ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯇꯥꯜ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯣꯔꯥꯕꯥꯠꯇ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯇꯨꯜ ꯕꯣꯔꯥ, ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯊꯥ ꯃꯍꯟꯇ ꯌꯥꯎꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯣꯔꯥꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯣ ꯑꯁꯥ ꯑꯣꯄꯟ ꯅꯪꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯝ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯌꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯚꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒꯥꯜ, ꯀꯔꯅꯥꯇꯛꯇ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯚꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯖꯔꯈꯟ, ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ, ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯗꯔꯚꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁ. ꯖꯦ. ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯩ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯖꯦ. ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯁꯝꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯦ. ꯄꯤ. ꯅꯗ꯭ꯗꯥꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯂꯧꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁ

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी फाल हौजिक संदोकचरी रेडियो लीला थै ख्रब इचेल लीला इब कैशाम कृष्णनी देवी लीला पुथोक पद तेंबांग असे मंगलेम भ लीला पुथोक पा माइबम ईशा कांता हौजिक लेजरे रेडियो लीला थै ख्रब इचेल

0: बेमा कैदौरे इसुक सुखधन हल इदिया
1: कैसु तौदे
0: कैसु तौदे हाइब यारोइने नमाइदो यादि कैदौरगे हायोइमी
1: कैसु तौदेमी
0: कैसु तौदे हायरगा करिगी फमुंगदा परपर हिथरीबा
1: हिथबबु कैदौगी
0: ngasai hobi hobi cha bo cha do bo chat khre chara wan ge hairu bu sunya cha injang le ho bani
1: ai chara rei ma
0: adu di ne ai cha lon biru ge paknam su leiram gani nang bu kai do ra ge haiba hai hai adu ga ne na pa ga ai ga na ne na khut na ning tam na si jina na ba sel sinare hai du na ne ma pham marang khang dana lo shin ba di ta un
1: ma
0: nang di ne nang pa bung ga ai ga gi ko hal la hen ni ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯪꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ
1: ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯛꯇꯣ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦ
0: ꯀꯗꯥꯏ ꯋꯥꯏꯗ
1: ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗꯅꯤ
0: ꯁꯤꯕꯤ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦꯒ ꯁꯅꯥ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦꯒ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯧꯔꯤꯅꯣꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯇꯥꯍꯟꯗꯧꯔꯤꯅꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯈꯩꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ
1: ꯑꯗꯤ
0: ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯥꯡꯕ ꯏꯁꯦ ꯗꯣꯁꯥ ꯂꯪꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯁꯤꯗꯤ
2: ꯍꯜꯂꯣ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯣ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯌꯦ
2: ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈꯤꯒꯦ
1: ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯇꯞꯅ ꯏꯃꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯨꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯇꯔꯟꯁꯤꯞ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯝ ꯗꯤ ꯇꯝꯊꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ
0: ꯕꯦꯃꯥ ꯅꯪꯕꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯆꯥꯔꯕ꯭ꯔꯣ
1: ꯆꯥꯏ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯏꯈꯟ ꯀꯟꯈꯠꯇꯦ
0: ꯂꯥꯏꯍꯧꯗꯤ ꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ
1: ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯃꯥ
0: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯔꯛꯑꯅꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯁꯤꯀꯣ
1: ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯜꯂꯦ
0: ꯑꯣ ꯀꯟꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯟꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯦ
1: ꯏꯃꯥ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦ
0: ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯄꯣꯊꯥꯔꯣ ꯄꯣꯊꯥꯔꯣ ꯑꯩꯅꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯀꯣ
1: ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯅꯄꯥꯒ
1: ꯍꯜꯂꯣ
2: ꯍꯜꯂꯣ ꯑꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯅ ꯁꯤꯗꯅ
1: ꯅꯪ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯕ
2: ꯑꯣ
1: ꯌꯥꯝ ꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯗꯤ ꯐꯣꯟꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ

0: ngan ba
1: ine
0: ine na silli lang ni ba puna makse nang gi phana ba ni nang thabak taw re da na ine na oina ba chin ba na tro ine na hai ri ba nupi ma sa du gi ma pa du pham a chau ba ni ma ma chu sap nai bi ama ni ma pa du na nang se thabak ha pi ba ni adu su paisa amat ta ting da na ngai sel oi ba da ma tik cha ba arem ba imung ni lang yen khoi gi di ma pa du special contact ठिकादार हाई दुगी ममादुसु हौजिकति पेंशन चटलेदना मखा ताब मचिन मनाउ मी ओइद्री नंसे मखोय सिंगदुगी लोइन चेनरा कदोरिबनी
1: अदुबु मा मसादी थबक तौजारी कॉलेज के ओजा ओइरिसिदि
0: खुंगन आइना हाइलिब नुपी मसासिदि मतोम तपोय लाउ सिंग दोकान प्लॉट मखोय गि इंखोलियम कै नंगि लोइन ओइदौरिनी नंगि तोलोप चाउना चाबना हेन गदब नत्ते
1: इने आइगे ngasi ओइरब पुनसीसी ओइरकपदा लंगलेना मरु ओइब थौलांग यारकपन
0: हौखिब कानादब दु निंगसिंगुनु मनी खुनब हाइतब तौगन मनी खुलग नखुत पायु नंगि ओयु
1: पुनम ओइदुन सु इने आइ लंगलेन गे मफम द मिनम ब ओइदब गि लांग द थुदुना माबु थादोलम हाइबसे अचौ पाब अमति पुगने आइगे पुनसीदा नुंगाइब फंगदब मानदे

ताबिरे फिल्म में गई सही था मिडलू फिल्म दके लोक जबा रणबीर थाउना दकी इसे हमा आकाशवाणी फाल हाउसिक गीत मलागे दमक निंग थोकोंग सम रंजना द सिनेजरी

दोस्तों, आज गीत माला में आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत धमाका, और आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे बेहतरीन इंडी पॉप गीत जो हर ट्रेंड और रील पर सूट करते हैं। आइए सुनते हैं इन गीतों को और तरोताज़ा महसूस करते हैं।

कभी ऐसा लगता है एल्बम का गीत था, अभी आपने सुना लकी अली की आवाज़ में। दोस्तों, ये गाने पुराने हो सकते हैं लेकिन इन गीतों को पसंद हर कोई करता है, खासकर 90 के दशक के श्रोताजन समझ सकते हैं, क्योंकि उस दौर कैसेट प्लेयर, रेडियो और दूरदर्शन मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। मेहंदी एल्बम से विभा शर्मा की आवाज़ में।

दोस्तों, आज संगीत धमाका कार्यक्रम में सुनाए जा रहे सभी गीत ऐसे शानदार गीत हैं जिसे सुनकर पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसे दिन जब न करियर की फिक्र थी, घर वालों की डांट डपट और ताने भी हमारा कुछ न बिगाड़ पाते थे, जब मोबाइल्स नहीं थे, पिगी बैंक से पैसे निकाल कर कैसेट्स खरीदना, टीवी पर गाने आने पर सब छोड़ छाड़ उन गीतों को बड़े मज़े से सुनना, इन गीतों का असर ऐसा होता था। अगला गीत ओपिया एल्बम से फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

आकाशवाणी फल पुफम से हजिक लाथोचरी तोान तोान सेसक पसंद की लाइल इसई मथा मथ सकूदब नहाकना तब सानहले तबंगीला ननाबू खाजब सुनते करीसु नहाथ मपोक मपोक खुद थौजा इरी खिपीयू तोलब ननाइदा

0: अंगांग के थोरम ताबी रे
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए

आकाशवाणी इम्फाल हौसी के मुताबिक से रेडियो क्लास चमरियांग खनिफाल सुबह तंकता क्लास सेवन के हिंदी की तरुक सुबह परा रानी गाइडिन लियो थौरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर एस एस एम के तेंगबांग लोनना संदोक चुब थौरमनी

0: रेजिया, रेजिया।
1: हाँ अबू।
0: गुरुजी आने वाले हैं, आ जाओ।
1: हाँ हाँ आ रही हूँ।
0: देखो गुरुजी आ गए।
2: सुप्रभात गुरुजी।
3: सुप्रभात सुप्रभात। बैठो बैठो बच्चों, आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं?
0: गुरुजी कल का पाठ तो समाप्त हो गया, आज नया पाठ पढ़ाने वाले हैं। पाठ का नाम है रानी गाइडिन लियू।
3: चलो ये तो बहुत मजेदार पाठ है, एक पर्वतीय वीरांगना की जीवनी कहानी है ये।
1: गुरुजी, रानी गाइडिन लियू का जन्म कहाँ हुआ और उनके माता पिता के नाम भी बताइए।
3: सुनो, रानी गाइडिन लियू का जन्म 26 जनवरी 1915 को तमेंगलोंग जिले के नुंगखाओ नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लोथानंग था
0: अच्छा।
3: और माता का नाम कचक लेनल्यू था
0: अच्छा।
3: वह अपने माँ बाप की तीसरी औलाद है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली ये बालिका एक साधारण गांव में पैदा हुई थी। वह आजादी की लड़ाई में निडर होकर शामिल होने वाली एक वीर स्वतंत्र सेनानी थी। बचपन से ही उन्हें साहसिक कार्य करना बहुत अच्छा लगता था।
0: तो गुरुजी, जो बाद में बड़ा आदमी बन जाता है वे बचपन से ही दूसरों से अलग सोचते हैं, क्या ये बात सत्य है?
3: हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे। गाइड

0: लियु भी ऐसी ही थी।
1: अच्छा।
0: 13 वर्ष की उम्र में वह जादोनंग से बहुत प्रभावित हुए। जादोनंग गाइडिन लियु के चचेरे भाई थे।
2: गुरुजी, जादोनंग कौन थे?
0: जादोनंग एक सच्चा देशभक्त थे। उन्होंने जीवन भर देश के लिए काम किया और अनेक कठिनाइयों का सामना किया। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी थी।
1: तो गुरुजी, उनका जन्म कहाँ हुआ था?
0: जादोनंग का जन्म तमेंगलोंग जिले के कांबिरोंग गांव में हुआ था। वह बचपन से ही इसी गांव में रहते थे। आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सरकार तब जनता पर अत्याचार कर रहे थे। जादोनंग ने अंग्रेजों को अपनी आंख का कांटा समझा था। वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए वह पर्वतीय महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे।
1: तो गुरुजी, जादोनंग बहुत साहसी थे।
0: हाँ,
1: अंग्रेजों का सामना करना नामुमकिन था। ये बिल्कुल अंधे और पत्थर के टक्कर जैसा था ना?
0: बिल्कुल सही। अबुंग, तुम बहुत जानते हो।
1: जी गुरुजी, पढ़ाई के जरिए जान पाया हूँ। पढ़ाई करना उपयोगी होता है। गुरुजी, आगे भी सुनाइए।
0: हाँ तो सुनो, एक दिन गाइडिन लियु जादोनंग से मिलने के लिए कांबिरोंग गई थी। जादोनंग ने गाइडिन लियु को अच्छी तरह से पहचान लिया। वह अपने वचन पर अडिग रहने वाली बहादुर लड़की थी।
2: फिर आगे सुनाइए गुरुजी।
0: जादोनंग ने अपनी बहन का अच्छी तरह से स्वागत किया और उनके साथ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा की। महिलाओं के प्रशिक्षण में गाइडिन लियु ने भी भाग लिया। उनके हाथ कुछ मुख्य कार्य सौंपा, क्योंकि जादोनंग अनेक कामों में व्यस्त रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य कार्य भी संभालने को कहा।
1: तो गुरुजी, उसके बाद जादोनंग ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त काम करना शुरू किया। अंग्रेज सरकार ने उसे दबाने के लिए कई पाबंदियां लगाई। अंग्रेजों को इनके गुप्त कामों का पता चल गया। अंग्रेजों की पाबंदियों से क्रोधित होकर उन्होंने अंग्रेज सरकार के एक अधिकारी को जान से मार डाला। गुरुजी, मैंने जो बताया ये सच है ना?
0: बहुत सही। तुम इस पाठ को मुझसे बेहतर ही जान चुके हो
1: गुरुजी।
2: आगे क्या हुआ गुरुजी?
0: आगे ये है बेटा, जादोनंग ने एक अंग्रेज को मारा, इसलिए अंग्रेज सरकार उनसे क्रोधित हुए। अंग्रेज सरकार ने बलपूर्वक जादोनंग को पकड़ा और उन्हें फांसी पर लटकाकर मार डाला।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ।
2: ये सुनकर दुख हुआ। अंग्रेज कितने बेरहम थे, किसी को भी ऐसे फांसी पर लटका दिया। औरों के देश को भी हड़पने की कोशिश करते हैं। अगर जादोनंग नहीं रहे तो कौन उनकी जगह लेंगे, बताइए गुरुजी।
0: और कौन ले सकता है? देश प्रेमी वीरांगना गाइडिन लियु ने जादोनंग के बाद उनका काम संभाला।
1: अच्छा।
0: उन्होंने नागा जाति के लोगों को इकट्ठा किया और जादोनंग के दिखाए रास्ते पर चलने लगी।
1: तो गुरुजी, जादोनंग ने गाइडिन लियु को अच्छा प्रशिक्षण दिया था?
0: हाँ,
1: इसलिए वे सब कुछ जानते होंगे।
0: सही है अबुंग, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जादोनंग के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। उन्होंने गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और कहा, हम किसी के अधीन नहीं हैं। अंग्रेज हम पर शासन नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने उत्तर कसार, मणिपुर के पश्चिमी जिले और नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। वह उस विद्रोह की अग्रणी थी। फिर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। इससे भी अधिक, उन्हें पकड़ सकने वाले पर 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया।
2: सिर्फ 500 रुपए? ये तो बहुत कम है।
1: हाँ।
0: देखो रेजिया, बहुत समय पहले की बात है, तब 500 रुपए का मूल्य बहुत अधिक था। वह बहादुर लड़की गुप्त रूप में गांव-गांव जाकर विद्रोह का प्रचार करती रही। जनता उन्हें बहुत मानती थी।

0: इसलिए अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाई। फिर उन्होंने हंगरूम में एक किला बनवाया, वहां चुपचाप काम किया करती थी। चालाक अंग्रेज सरकार को उनके इस गुप्त जगह का भी पता चला।
1: ओह, उन्हें पता चल गए?
0: हाँ, अंग्रेज ने उन्हें पकड़ने के लिए वहां आक्रमण किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए आसाम राइफल्स के जवानों को काम में लगाया। जवानों ने कई अत्याचार और अन्याय किए। इतने दरिंदे थे कि जनजातियों के लोगों को जीवित जलाया, स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा।
1: गुरुजी, अंग्रेज क्रूर ही नहीं बल्कि राक्षस के समान थे। वे दूसरों को इंसान ही नहीं समझते।
0: सही कहा अबुंग तुमने, वे निर्दयी राक्षस के समान थे। सीधी साधी किशोरियों और स्त्रियों की इज्जत पर हाथ डालकर उन्हें अपमानित करते थे, कई प्रकार के अत्याचार किए। इस तरह अंग्रेजों ने कई महीने तक दमन नीति चलाई। उनके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं बोल सकते थे। वे गांव वालों की फसल को छीन कर खा लेते थे। यदि कोई कुछ भी बोले तो उन्हें गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया जाता था।
2: बाप रे, तब तो गांव वाले अपने अपने घर चुपचाप रहते होंगे। बहुत कष्ट में होंगे, है ना गुरुजी?
0: वे बहुत कष्ट में थे। औरतें अब घर से निकल नहीं पाती थी। अपने घर चुपचाप जो मिले वही खाकर जी रही थी। कब किसकी बारी होगी कोई नहीं जानता था।
2: गुरुजी, गाइडिनलू का क्या हुआ अब?
0: गाइडिनलू, वह भी उन दरिंदों से कितने दिन छिपती। 17 अक्टूबर 1932 के दिन नागालैंड के एक गांव से उन्हें पकड़ लिया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए। सन 1935 में अंग्रेजी सरकार ने गाइडिनलू को मौत की सजा सुनाई। सब इस सजा की समाचार को सुनकर रोने लगे। वह बहादुर थी। उन्होंने इंग्लैंड की महारानी से अपील की थी। परिणाम स्वरूप उनकी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस प्रकार उन्हें जेल में बंद करके रखा।
1: तो गुरुजी, क्या वे हमेशा जेल में ही रही?
0: हाँ बच्चे, ईश्वर की मर्जी किसी को नहीं पता और ना कि कोई जान सकता है। अचानक सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू शिलोंग के जेल में आ गए, जहां अंग्रेजों ने गाइडिनलू को रखा था। वही नेहरू ने गाइडिनलू से भेंट की। उनकी अवस्था देखकर नेहरू को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अंग्रेज सरकार से गाइडिनलू को मुक्त कराने के लिए निवेदन भी किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनकी बात नहीं मानी।
2: तो फिर वे हमेशा के लिए जेल में रही?
0: रुको जरा, आगे की कहानी तो सुनो। नेहरू भी असहाय हो गए, इसलिए दोबारा उन्होंने अंग्रेजों से विनती नहीं की। उस देशभक्त महिला के प्रति उनको सहानुभूति हुई। नेहरू ने उन्हें कबुई जनजाति की रानी कहकर संबोधित किया। तब से लोग गाइडिनलू को रानी गाइडिनलू के नाम से पहचानने लगे। 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्र मिला। भारत की आजादी होने के तुरंत बाद रानी गाइडिनलू को जेल से रिहा किया और उनके जीवन यापन के लिए उन्हें आजीवन पेंशन प्रदान किया।
1: गुरुजी, तो फिर रानी गाइडिनलू खुशहाल जीवन बिता रही होगी?
0: कहाँ का खुशहाल जीवन बेटा, पहले मेरी कहानी ध्यान से सुनो।
1: हाँ गुरुजी।
0: सन 1956 तक उन्होंने समाज सेवा की, लेकिन अपनी इच्छा के अनुकूल उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध काम किया।
1: हाँ।
0: 6 तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया। सन 1972 में भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्र सेनानी घोषित किया और ताम्र पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
1: उन्हें सिर्फ मणिपुर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सम्मानित किया जाना चाहिए। उनकी जैसी सहनशील और बहादुर महिलाएं संसार में दुर्लभ है ना?
0: हाँ अबो, हम भारतवासी उनके ऋणी हैं। 17 फरवरी 1993 के दिन रानी गाइडिनलू ने इस संसार को अलविदा

0: कह दिया। आज तक मणिपुर सरकार हर साल उनके जन्मोत्सव पालन करते आए हैं। वह अब नहीं रही, लेकिन उनके त्याग और संघर्ष की प्रेरणा को हम सब भारतवासी कभी नहीं भुला पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, यही समाप्त करते हैं आज का पाठ।
1: जी गुरुजी।
2: धन्यवाद गुरुजी।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯚꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न है रानी गाइडिंगलू जादोनांग से मिलने क्यों गई आज का प्रश्न है रानी गाइडिंगलू जादोनांग से मिलने क्यों गई
0: अचुंब पाखुम पीबीरक पसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लब महिरोई सिंग दा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनी सुब अमसुंग अहुम सुब तारब सिंग दा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ, ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ SMSꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
2: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯥꯝꯃ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯚꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯄꯔꯥ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ SSMꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ꯫

0: रानी
1: नमो खुम गमो मरंदे नंग नमा व यम सिद थम
0: न तिने तमो रानी दो
1: नंग नमा व थमो सेन नुम सिब म खुरा म ओइरम तार बदे
0: रानी दो तम
1: ए खगे ए पुम म खने आयो ए खोय पो पिर म बाबा म फम कराय दि सखे खमो नशी मशा आइन हलक मिकु बशिदा हराव हराव न नाग हलक लबरा हाय न कौर द्रिवि मरम नंग नदी थोयवा या मलोय न खगे को थोयवा अरे ऐ लेजर मयो मिकोल संपत्ति पनव नंग लोग जाओ ऐ दिस लगनी शा पुदुनु थोयबा अदुका नंग मतम मदे ऐ जी फंग तान छिब लुपा लाग अमगी काउंटर नंगे सर्विस काउंटर छे हो जित तब गेट पियो नमर पिरमणे छे नंगे सर्विस फोन ने छे देवी की पुष्पा नंग संगे बदु कदाई दनो तंगाई फदरने नंग सेल ब फिरो ने दुदि है ना इमु मसित की पोना अब सो प्यारो पुष्पा लाओ दीदी की मांग थारो च
0: स्तंभ यम मसित था तो तुरे च बिखरु ने
1: शोन करो
2: कका
0: कका की पुष्पा कका लाले कका लान खेने पुष्पा कका बु मुक्त नाक पियो तमो अई लान खियो नाक त ननाओ वो मुक्त नाक पियो तमो ऐ लान खबरी ने तमो
1: थोइबा मतम मदु हेन खे थोइबा मतम हेन खे
0: मनाओ मन मया मर कयार घन लान खबसु मया मन मनाओ बुंगा पी फम थोक दबर ने तमो अपंग मन नाओमी ऐ ने लान खिबुंगा तनी अमुक्त सिंगा को यु ने तमो
1: या मन नंगी न फम लान मनी को थोइबा नंग या मद खक लान दे या मलोइ ने खई को थोइबा
0: करी की दबुक्त न मा किने हाय बद हन येंग बद कना सुले यद्र बबाब करी गि दबक तैन बाब यु मस्त गि तां थु करी बा ऐन बबाब फंग न थिरु कने ऐ इंग सिद गि बबाब फंग दि फावदि ऐ यु मस्त म फल ऐ गि दि ईश्वर गि मस्त कोर बयाम बा नाक न साखी ऐ न नंग न खोंग पाइ न वासक्रम गि ऐग सिदगी बाबा फंगनी फबरी यमस्तु महलक नरो ने तमो ऐग तमो गिन खों पाए वसु छरी ने तमो
1: थोइबा ओगलो ओगलो थोइबा थोइबा नंगे चली बदु कदाई देनो लाखो वाले कोने थोइबा दीदी की पुष्पा नंगी कका सत खे दीदी के सबो फाते मंगा फौदरी नंगी कका सत खे पुष्पा नंगी कका सत खे
3: दीदी ऐखोई के काला कने ऐखोई के का छोई ने हला कने ये अतो बुरो ऐखोई हिरानी का फुफु का छोई ने पुरा कने बा दीदी दीदी वानी इमुंग जंग कने आ फिर उंग दोष लाओ सेंस लाओ दीदी
1: आधे जंग ले बिची बिखिया भी न दरा मारी नंग ने मारी सेंस की हापी कोको हापी को हापी को
3: कि क्या रे छोंद से लो

0: बाबा की वाली लाई पुशी लोए बनारो तो वाली नहीं बाबा की वाली लाई भी अपना बाबा के नाम दे बाबा बोर पिरम के लाओ बाबा बोर पिरम के लाओ ये वही शारी मां कभी ना लो पिरो पंगो यो को बाबा की भी बाबा ला बाबा बोर पिरम के लाओ
1: बाबा बाबा ने सब पैसे ही दो उन तेरे सब को बाबा ना साया नतानी ये बाबा
0: हो बाबा बाबा सके ताऊ को

0: CEO singa wali sana pada Perdana Menteri na malam ke hai toi ching toi raba miyoi ching ki pung ning ching ching bangamba space sector ki mapung paraba ecosystem ama sem gat na production ki mang na hai malam ki mapung ke ya da lady ba miyoi ching na Bharat asibu space ki lamda makoi ki tungi lai ba clip kada ba mapam amani hai na phau han na ba hona ga da bani Shri Modi na hai
1: bahut logo ko hame jodna hai videsh se log gaye hue wapis aa rahe hain हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूं जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते
0: वरी शनबदुदा भारत की आहान बस स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट Aerospace ki chief executive officer Pawan Kumar Chandan na Shri Modi bu space ki lamda thapak paikat pagida mag thagat papung dokhi. Shri Pawan Kumar na hai maha ki company na factory ahum linka le amasung tha amada rocket ama puthopang ambagi capacity leire. Maang na hai sahi esi ki julai tara nipanda makhoi na Bharat ki ihan hanbal lanai oine saajaba rocket mai pak na thagat kre. उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेशनल स्पेस डे कमरी लेना मियाम दे याई पाउजेल पीरी सोशल मीडिया द थगत पवारोल द श्री राधाकृष्णन ना हाय भारत ने स्पेस की लम्दा पाइकत पसिंग थानिंगाई ओइरबा थबक सिंग अछि लाइबाक असिगी विज्ञान की लम्दा थुइदोक हेंदोक पा हाय सिंगबा इनोवेशन अमसुंग ज्ञान लौसिंग अदु उठोक पनी लाइबाक असिगी वैज्ञानिक सिंग इंजीनियर सिंग अमसुंग इनोवेटर सिंग असिगी कठोकपना भारतपु गगनयान गुंबा थोइदोक हेंडोकपा मिशन सिंग माइपाक ना पाइकत पंगम हल्ली बनी हाइनशु उपराष्ट्रपति ना मखोयगी मफमदा तौबिमल खंगबा उठकी सोशल मीडिया द थागत पवारोल द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाय लिसिंगनि नि फुतायत पाउबदा भारत असि चाकत पलाइबाक अमा ओहेन्ना बवारे प्लौरे अमसुंग मंगला नसि मंगफाउ ना हनबेदा स्पेस सेक्टर ना मपुंगै बेथोकदांग लौगनी केंद्र की साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नशु चंद्रयान थ्री की माई पाक की इतिहास अदु नौहौन निंसिंखी मणिपुर दसु राज्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने सिंधुना नेशनल स्पेस डे की पालन थोरम नसी इम्फाल की ताकेल पाटा लेबा मणिपुर साइंस सेंटर की ऑडिटोरियम द पांगथोखरे थोरम अदुदा रिसोर्स पर्सन सिंगना तोंगान तोंगान बहिरम द वांगांखी Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons Manipurna National Foundation India ki makhade chatharak pathoram gi saruk ama oina outreach program amangasi Imphal East jila ki Star Sporting Club da pangthokre persons with disabilities ki phangpham thokpa hak singi matang da pangthokiba awareness program aduda resource persons singna tongan tongan ba hiram da wangang ki सैरेंब सिंगी अपुनबलुप साल मणिपुर लिंखत्खिबगी तरा तरुक सुब कुमोन थौरम ngasi बिष्णुपुर जिलागी ओइनाम पब्लिक हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुग मरी लैनाना मियोय तरुकता सैरेंब साइबानबा मसुंग सैचकपकी मनासिंग पिदुने काइ खुमनाखि अष्टलक्ष्मी दर्शन युथ एक्सचेंज प्रोग्राम गी मखादा राइज्य सिद लाखलिबा महैरोय सिंगमदि मिहुत कांबुदा नित मणिपुर अमसुंग JN Manipur Dance Academy Imphal gi Kambuna Manipur gi ina khulabannat amadi kala sanskriti goiba thoram sing yanghan kre National Integration Culture Exchange amadi Youth Integration da miteng thamduna thoram adu pangthok khibani pau gi marak thana atenba break ama
2: मियाम द खंगन जबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल दा निंगथौ काबा खुदिंगी नुंथिलपुंग अनिदगी अहुम मखाइ फाउबा रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी फंबा हौजरे जिंदा सोइबा लैबदिगी हौरकपा लैना सिंग पोकपदगी सोइरकपा मपुंग मरै फारकपदा थिनथबा नत्रगा इमुंग मनुंगी शुरोन दा लौनबा लैना सिंग लै हाइन चिंगनबा सिंगबु खंगदोकपा ज्ञान तामिनबा अमदि तौफम थोकपा थौरम सिंगगी दमक मियाम दा लाखपिनबा खंगनजेरी मखाताबा कुपमरोलगी दमक रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी सेकंड फ्लोर न्यू ओपीडी ब्लॉक रिम्स इम्फाल दा लाखपिनबा निंगसिंग जरी
0: ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी

0: 석담 마시다. 아이네 팅크라바 랄라울룹 아마기 미요이 니프테루 쿠라이 타독도나 사르카르 성적히바. 머니포르다 NRC기 와펌 간다락보다 MPCC나 빵비아바마땡 빵가니 하이바 MPCC기 와펌. 사히 홈기 마통다 임팔 구하티 버스 서비스 하원키바. 글라스고 커먼웰스 게임스 리싱알리 쿤타룩다 타카만 팡락크라바마디 사룩 야루부싱 무케만트리 나타람 오키바 아마송. 파우기 석담다 비스노푸르 젤라기 파우다. 아이네 팅크라바 라로룹 KCP 타이벙 간바 강룹기 미요이 니푸타룩 쿠라이 타독투나 레이바쿠포 누미타 사르카르 상작레 임팔기 아한바 머니포르 라이플스기 페레드 그라운드 방톡파 홈커밍 세레머니다 마코이나 농메이 쿤 농메이 마루 자니 타라타룩 아마디 엑스플로시브 아훔 피칼라키 토르마두다 무케만트리 유남 켐산하이 쿠라이 타독투나 상작르바 뿜노막다 사르카르나 사르카르기 리바이스 서렌더 컴 리해빌리테이션 폴리시 리싱알리 타라니 빠르기 마카다 셀기 땡방 피게니 मुख्यमंत्री ने हाय
1: जयोम ने वा तो क्राइसिस तो ना कोई वाकल दा आना इंसर्जेंसी और हम दबो बोले सु इरांग दो ना खुद द नो में पाइंग बोली वाकल हाउन भी वा अ दुबस चीज तो दगी मैया हम वा याव भी मनीषु ताई मरम दी ये मतम दुगी वाकल ना है बताए अलो कम्युनिस्ट पार्टी की ताइगोंगा अंबा अमदी मारी ग्रुप को करा हम ना उपचरी अमदी सरकार की माइकी दगी Anomba, mending pangkanda, koi, kulai, paiwa, ataga kulai mapana. Sakit pada lamama koi ba, yaro haiwa, kanbi ada, topi riba kudi mabu, aina amuka na sunkai kundu jadi. Masih pengsensi, revise serda kam rehabilitation policy 2018 ni maka tani, masida, hakutra terukki wina, shengi tembang wina, kada singda, bisa gania madi, balak, madi, fix deposit masu, amakanda, tunggu wina, Tena biaya apa aja betul. Aduh, kita macam tu skill training kumpa supaya amat terukkan dah. Aika aika cara kedua apa? Lagi utama senjata yang anu apa? Pola betul sekarang coba macam panggil.
0: Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Presiden Okram Iwo Bin Hairi. मणिपुर की हौसेग यामना मरु ओइरिबा एनआरसी की वाफम खंदरक पदा एमपीसीसी ना पांगबया बमतेंग पुमनमक पांगनी पौमिसिंगदा श्री इबोबिन हाई एनआरसी तोरब मतुंग मिकोक थिब हाइबसी यामना तंगाई फदब अमनी मतम मतम की ओइबो वाफम खननब पांगथोक बमिफम सिंगदा एमपीसीसी सु अदुमक सरुक यादुने लागली मखाताना सु सरुक याखिगनी श्री इबोबिन हाई
2: लाइव थिब थौदो हाइबदा 3 मे 2023 दगी हौरगा मणिपुर द थोन निंदा बा

0: 아마 도키비시 마시 마야암나 헤나 캉비르 보내고 자히 아홈 헤라 아버시 displaced family 마야마마 싱아마 숨탐바끼 not less than 60,000 internally displaced person 또한 동안바 relief camp 싱다 후직 라이너리 아두기 마스터 뭐 후직 relief camp 된 라이리비시 모이기 하나 하나 레람바 마팜싱다 용도 almost 아야마나 demolish 도기바 아야마 수야오래 house listing 도보시 아두 그럼 하이나 도거도리브노 district 아마가 아마가 수 community 삼나 보시 야드리야 아두 시대 까마이 도드 미싱 키가도리바 까마이 도드 house listing 도거도리브노 아 코이나 하이저리브디 government 미나나 수 캉나브네바 아두 레이디바 state government 시대 캉나브네바 아두나 오직 레이디바 머니푸르기 컨텍스 데이다 카라 예이톡비고 레이디바 IDP 싱 모이 모이기 레스펙티브 군두다 마이 마이 마이 마이다 한전나바 호추 환업이 한전들이 보디 미코 키바 디퍼 도비오나 하이브다 승소이 쇼이드나 고민의 미나는 수 다비를 보이수 다시 자이
1: Raisasida Iran number Moiduna Sahi Ahum Lom Lebdurbamatung Imphal Degi Dimapur Pauruga Guwahati Tamna Sianba Bus Service Irai Numitegi Haukre Imphal Gi Kumalapakta Leiba ISBT Degi Kongsan Kiba Bus Aniyamasung Winger Manga Aduda Purna Miyoi Samakun Manga Rom Tongki Numituda Guwahati Gidamak Imphal Thadoki Ba Bus Da Tongkiba Passenger Signa Asumna Phongtokki
2: Sahi Ahum Gi Matungda Imphal Tu Guwahati Lambel Sida
1: मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हाइरी Manipur gi mingsat purakli ba sanroi singbu hena puling thogon abagi pandamda sarkar na special recruitment rally ema sem lagani Glasgow Commonwealth Games lisingali kutarukta takaman phanglakraba singama sung saruk yaru ba sanroi singbu Imphal gi Khumalampak indoor stadium da ngarang taram no opgi thoramda mukhyamantri na hai Manipur da thogan ningdaba thogdo kaya na phajada ba phiba mama leiringi cherakta Glasgow Commonwealth Games da Manipur masa amana iyan hana takama lorukpagi warina Bharat pumbada ningki masi yamna sauthok saningai ni मुख्यमंत्री ने हाय
3: सरकार ने जिन बैठी सु जिन खेली बैठी बट लोकल क्लब पेरेंट ये सारा बा पाप जबा मैं आमसी ना सारा बस ये जीवा उसी की ओर पर ये एक कम जगे गरांग दू कैबिनेट ता स्पोर्ट्स की थबक आप की पॉलिसी मरम दी करीम करीम कम का ना सारा रोई सिंह मरक के मारी आदु भी के मुंदा भी दे मारा आदु भी मुंदा भी दे हाय इतना बा मिसिंग दिखाई ना गया है बच्चे को मान बपोट के ठोल के दो तो ठोक देना बा थबक आप की पॉलिसी करा कैबिनेट पास हो गए हाना कॉमनवेल्थ का लाख मंगा पीर बदो अंदर की कुछ पीरनी अदुगा सिल्वर तरह पीर बदो का मंगा पीरनी दुगा पार्टिसिपेंट की अन्य गजर खाना पीर बदो तो मरी पीरनी अदो एक्सपगी लेबाक्सी रिसोर्स या मरी जता बा वा बा बी मीडिया पीनिंग बा ईरान का संपरकना रिसोर्सफुल है ना वेला गदी है ना पीरकिनी या हमने पी दी है ना निगन नबदो करो
1: आकाशवाणी इम्फाल की पाव की सक्तम दा इक्वाई की बिष्णुपुर पाउमी आर के मणिपुर सनाना बिष्णुपुर जिला की मतांग दे पीबा पाव दा
4: हौखिबा आगस्त तारा मंगा द लेपाक्सिगी मरफू सुबह स्वाधीनता दिवस पालन पांगथोक नबगुम जिला सी दसु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर की मिनी सेक्रेटरी कॉम्प्लेक्स द पांगथोक की थौरम की मपुंग ओइबदी डिप्टी कमिश्नर पूजा एलांगबम द जाति की फिराल पाहनबा मास पास कंटिजेंट सिंह सलामी ओकपा मखल मखा कया की कुमई सिंह उत्पा मथौ निंगथीना तौबा सरकार की कर्मचारी सिंह दा सक्ताक चे पीदुना पुन थौगतपना थौरम की मपुंग ओइबे सक्तम ओइखि द डिप्टी कमिश्नर ना लेबाक सिगी निंगखा तमनब होना बद सरुक याकिबा मतमदु गे थौब सिंह दा इकाई खुमनबा उल्लगा जिला सिदा पखलिब सरकार की खुजिन थौरांग सिंह माई पाखलब वफम कया मियाम द थमकि लुइनना होम डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी ना जिला सिदा लखत खरबा अमदि माई पाखलब सिंह मियाम द पौदम की मान मखा तारदुना पीडब्ल्यूडी एफसीएस लोकटाक लेक चाइल्ड प्रोटेक्शन फैमिली वेलफेयर आईडीबी सिंह महिंग फगनबो लखलक बखोंथांग सिंह अमदि स्पोर्ट विभाग ना आहान बोइना डिस्ट्रिक्ट लेवल ओलंपिक गेम मोरांग पांगथोक किबसिंग जिला सिदना

0: 아만바 람비 필마시레기 위드롬 나 보이나 삭바 라젠 옌 꼭봉기 마이익다 오케나 막잡나 세랑바 세이시 다한자 키보가 로이나나 땅카가 시다 필미세이 란톡잡아 로이자리
1: 이름덤 이래 짜기니 칸나 나하 아한 가이드나 마담마담기 톡나럽바 미요이크야 ngasi ekhuina thingari
2: makal makal gi election lakpada anuba ari ba candidate sing changyang gi damak tholuktuna leibak sembada acho ba saru gyana ba honari
1: micham ekhoi mayam nasu makhoi bu kanano kari thabak tokhraba ge aduga kari kari tawrakani haibasidi khangningli
2: lakaduri ba manipur gi election da candidate ubiningli ba singi wakalon phongdok chanaba amadi miyam da masak takchanaba minit ohum dagi manga phawwa radio gi khuthang da sandoknaba matam thamjari
1: sponsor tauduna sandokchagadaba thauram sigidamak akashvani falki commercial section da tanabi
0: thauram sandokchari basa akashvani falki sangai channel dagini hojek nomidangi pungma pantare manipuri da pau taminarsi
3: आकाशवाणी इम्फाल वहेंगम वाशिंगटन ने पाउ पाजरी मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल की मरफुद्रा माथो शुभ चही की मिफम उपाधि सेल की मना पीबगी थौरम इम्फाल की जे एन मणिपुर डांस एकेडमी पांथोखरे थौरम तोंगान तोंगान लम सत्ना मई तरह तरह परिषद की उपाधि पीदने कई खुम उठी मई मंगाद परिषद की सेल की मना मई मापलना परिषद की लाइक पीब सेल की मना यंथी थौरम वांगद मणिपुर विधान सभा सदस्य थांजम अरुण कुमार सिंह है मणिपुरी लोल अवांग था की लोल लोनना क्लासिकल लैंग्वेज याब लोल अब हौरक्लिब मिरोल मणिपुरी लोल की महोत्ता तई लोल हेन पामन सकना मणिपुरी लोल लोलजान क्या यौरक्नबगी मरम ओहेलपयाबगी चिंगनब अईब अईबी लमदम असिगे असेंब मणिपुरी लोन हेन चाखलनबीजनब होनाबद अचौब थौटांग लौबीनबू श्री अरुण कुमार है लमदम असिगे हौगल्लिब नहा मणिपुरी लोन लाजनब की थवों चतरपी मौ उसीदू नुनांग फोंदी त्रिपुरा की मफम कयाद अरंग अहिंग चुप कनब नोंग चूबदगी चंद्रपुर बालदखल अरालिया अगरतला की अकोबद मफम कया इसमजिले तुरल लौखों कयाद की पाथरप इन यू लम्बी अनेब मफम कया थमजिखीद मौसा की पुनसी अकब थोले इचा सोखल मफम मई कया रिलीफ कैंप चंजफम नागसेल मंत्री राजनाथ सिंह लान की जहाज सिंह ऑफशोर वेसल्स अतई

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 15 सेकेंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। 1967 में ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था शागिर्द और इसी फिल्म के नगमे के साथ आज के इस सफर का हम आगाज करेंगे। शागिर्द जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन समीर गांगुली ने किया था। फिल्म में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म की कहानी और किरदारों में उस दौर की हल्की फुल्की शरारत रोमांस और रहस्य का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि शागिर्द आज भी 60 के दशक की यादगार फिल्मों में शुमार की जाती हैं। उसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गीत है जिसने इस फिल्म को संगीत प्रेमियों के बीच एक अलग पहचान दिलाई और वो गीत है दिल विल प्यार व्यार। क्या खूब मस्त मौला अंदाज था इस गीत का। प्यार को लेकर बनी ये चुलबुली सी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शागिर्द के संगीत की बात करें तो फिल्म में कुल 6 गीत थे। इन सभी गीतों का संगीत तैयार किया था मशहूर और मारूफ संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जबकि गीतों को अपने अल्फाज दिए थे मशहूर गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। मजरूह साहब के बोलों में जहां मोहब्बत की मिठास थी वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों में उस दौर की ताजगी और रवानी। यही संगम शागिर्द के संगीत को दिलकश बनाता है। तो दोस्तों शागिर्द सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं बल्कि 60 के दशक के उस सुनहरे दौर की याद है जब फिल्मी गीतों में सादगी भी थी शरारत भी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में। और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक रही, और वो फिल्म है 1967 में आई ज्वेल देव। दोस्तों, पुरानी फिल्मों की दुनिया में कई बार कहानी पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लिखी जाती है, और आज की कहानी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है जहां एक अभिनेत्री का इनकार हुआ और दूसरी अभिनेत्री की एंट्री ने फिल्मी इतिहास में एक यादगार जोड़ी बना दी। बात हो रही है 1967 की मशहूर फिल्म ज्वेल थीफ की और इसके मुख्य किरदारों की कास्टिंग से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी की। फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार के तौर पर सबसे पहले संपर्क किया गया था खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो जी को। हालांकि सायरा बानो और देवानंद इससे पहले प्यार मोहब्बत फिल्म में एक साथ काम भी कर चुके थे, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। हुआ यूं कि जब देवानंद साहब सायरा बानो को ये किरदार करने से के लिए उनके पास जब गए और सायरा बानो जी ने इस किरदार को करने से मना कर दिया और इसकी वजह उनकी शादी बताई गई। उन्होंने उस समय के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार साहब से निकाह कर लिया था जिसकी वजह से यह फिल्म करने से मना कर दिया था। फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार के तौर पर सबसे पहले तो उनको संपर्क किया ही गया था, लेकिन बाद में किसी और को लिया गया। मगर उससे पहले भी सायरा बानो ने 1965 की फिल्म गाइड में रोजी के किरदार का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। गाइड का निर्माण भी देवानंद साहब ने ही किया था। अब जरा सोचिए, अगर सायरा बानो ने गाइड और ज्वेल थीफ दोनों फिल्में कर ली होती तो हिंदी सिनेमा का इतिहास कितना अलग होता, कुछ अलग ही नजर आता सब कुछ। लेकिन फिल्मी दुनिया में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। सायरा बानो के बाद इस किरदार के लिए चुना गया वैजयंती माला जी को। वैजयंती माला और देवानंद की जोड़ी दर्शकों के लिए बिल्कुल नई नहीं थी। दोनों लगभग एक दशक पहले अमरदीप फिल्म में एक साथ नजर आ चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वैजयंती माला को देवानंद ने गाइड में रोजी के किरदार के लिए भी विचार किया था, लेकिन कुछ वजह थी जिसके कारण उस भूमिका के लिए उनको नहीं लिया गया, और फिर बनी देवानंद और वैजयंती माला की जोड़ी ज्वेल थीफ में, जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। दोस्तों, यही तो सिनेमा की दिलचस्प दुनिया है। कभी किसी का इनकार किसी दूसरे के लिए कामयाबी का रास्ता खोल देता है, और कभी एक छोटी या छूटी हुई भूमिका किसी दूसरी फिल्म में इतिहास रच देती है। तो अगली बार जब भी आप इस फिल्म को देखते हैं, यानी ज्वेल थीफ को देखने का मौका मिलता है, तो देवानंद के साथ वैजयंती माला को पर्दे पर देखें तो ज़रा इस पर्दे के पीछे की कहानी भी ज़रूर याद रखिएगा कि किस तरीके से किसको कहां कैसे मौका मिल जाता है। तो आइए इसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत आपको सुनवाते हैं लता जी और किशोर कुमार साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 14.1 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत मसाला फिल्म हाथ की सफाई की। हम जानेंगे इस फिल्म के बेहद खूबसूरत क्षणों के बारे में। 1974 में आई फिल्म हाथ की सफाई एक ऐसी मसाला फिल्म जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, रिश्ते और जिंदगी के कई रंग एक साथ दिखाई देते हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी थी उस दौर की मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने। फिल्म के निर्माता थे आई ए नाडियाडवाला, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी प्रकाश मेहरा साहब ने। और पर्दे पर नजर आए उस दौर के मशहूर कलाकार विनोद खन्ना, रणधीर कपूर और हेमा मालिनी। साथ ही फिल्म में सिमी गिरेवाल, रंजीत और सत्यन कप्पू जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए। यानी सितारों की ऐसी महफिल जिसमें हर किरदार अपनी अलग पहचान रखता था। विनोद खन्ना ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी से ऐसा असर छोड़ा कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को, यानी इस फिल्म को फिल्म फेयर में यही एकमात्र नामांकन मिला था और विनोद खन्ना उस नामांकन को पुरस्कार में तब्दील करने में कामयाब रहे। फिल्म हाथ की सफाई की कहानी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं थी। दरअसल ये फिल्म 1959 की फिल्म दो उस्ताद का रीमेक थी और सिनेमा की दुनिया में ये कहानी यही नहीं रुकी। बाद में हाथ की सफाई को 1976 में तमिल में बनाई गई और फिर तमिल में ही दूसरी बार इसका रीमेक हुआ 1981 में। यानी एक कहानी और अलग अलग भाषाओं में उनके नए अंदाज। अब जरा फिल्म के संगीत की तरफ चलते हैं, क्योंकि किसी भी मसाला फिल्म की रूह उसकी संगीत में बसती है। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण ज्ञानन जी ने और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत रहा वादा कर ले साजना। इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। इस फिल्म के गीतों के बोल लिखे हैं गुलशन कुमार मेहता ने, जिन्हें हम गुलशन बावरा के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी फिल्म का वही बहुत ही खूबसूरत सदाबहार नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म हाथ की सफाई से। ये फिल्म आई थी 1974 में और इसी के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब हर सिंगार से दीजिए इजाज़त। फिर होगी हमारी मुलाकात आपसे कुछ ही देर बाद। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण और उसके पश्चात 11:40 पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, जिसमें सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today's show, Subodh Mishra and myself, Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बस याद रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 23,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज इन अगस्त सो फार। In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी सोने और चांदी में चमक कायम और पश्चिम एशिया में तनाव जारी।

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनके पास ही चलते हैं. सरबजीत
0: बिल्कुल,
1: यूपी से विवेक हमारे साथ हैं. विवेक स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हाँ, मार्केट इंटरटेन और एक्सपर्ट को नमस्कार.
1: नमस्कार
2: सर, मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP के द्वारा इक्विटी क्लास में 8 से 9 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ. और मेरे पास अभी एक लमसम अमाउंट है जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी क्लास में. मैं इसे SPV के माध्यम से, मेरे दो प्रश्न है. SPV के माध्यम से मैं इसे 12 महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ, क्या ये सही है समय अवधि या इसको चेंज करना होगा. मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं एक तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, मतलब इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मुझे रेशो क्या रखना चाहिए सर. जैसे मेरा कोर्ट पोर्टफोलियो है उसमें मुझे कितना परसेंट रखना चाहिए. और जैसे मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में चाहता हूँ तो मुझे मैं अपने उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहता हूँ और एक वैल्यू फंड भी रखना चाहता हूँ, तो कृपया इसका जो रेशो है वो मुझे गाइड करें.
3: विवेक जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि STP के माध्यम से वो लमसम आप इन्वेस्ट करें, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच रहती है. ये काम सबसे ज्यादा तब आती है जब

0: आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा देर पड़ा रहता है और डर रहता है कि कोई कुछ यूज आ जाएगा इसका और आप उसे वहां पर खत्म कर देंगे. तो एसटीपी के माध्यम से फायदा ये रहता है कि वो लमसम आपने ऑलरेडी एक फंड में डाल दिया, अब आप उसको छेड़ेंगे नहीं और आप वहां पे अपने फंड को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि वो इस फंड से उस फंड में डाले. यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपको जो जिस फंड से आप एसटीपी कर रहे हैं, जनरली ये लिक्विड फंड रखना चाहिए ताकि उतार चढ़ाव कम रहे, तो आपका बेस अमाउंट पे उतना फर्क ना पड़े. जो आप डेट फंड लेंगे और जहाँ से आप उसमें से जिस इक्विटी फंड में जाएंगे, ये सेम एएमसी के रहने चाहिए. और हर इन्वेस्टमेंट जो यहाँ से कट रही होगी उस पर एक टैक्स इम्पैक्ट होगा, जो कि तब नहीं होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं. तो आप इसके बेसिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं. जो आपका दूसरा सवाल है कि कोर पोर्टफोलियो और जो एक हम सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं, जहाँ पे हम मिड स्मॉल को ज़्यादा एलोकेट कर पाते हैं बट कोर को थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाह रहे होते हैं, तो जैसे आपने कहा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सारी कैटेगरीज आप कोर पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हैं. और मिड एंड स्मॉल कैप आप अपने सप्लीमेंट्री के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने बोला आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप 8-9 साल से कर रहे हैं और आप आगे भी करना चाहते हैं, तो आप 30% का एक रफ एलोकेशन अपने मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रख सकते हैं. बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब आप फ्लेक्सी, वैल्यू या मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड के चुनाव पर डिपेंड करता है कि वो फंड मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेता है. तो जब आप अपना मिड और स्मॉल कैप देख रहे हो, उसको सिर्फ उन मिड स्मॉल कैप फंड्स में ना देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए अपने पोर्टफोलियो में कि मल्टी कैप, वैल्यू या फ्लेक्सी में से कितना मिड और स्मॉल कैप आ रहा है, और रिलेटिवली इसको बैलेंस आप 30% के अराउंड का रख सकते हैं.
1: जी, विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और स्नेहा आपने जो जवाब दिया है, ये लगता है म्यूचुअल फंड के हर निवेशक के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं. इसके अलावा भी कि जैसे हम गोल्ड में या सिल्वर में कितना परसेंट रखें और हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें होना चाहिए, ये सवाल और इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं और इसके जवाब भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन शायद हमें कार्यक्रम में अक्सर इनको रिपीट करने की जरूरत होती है.
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत बुरा करती है, ये सवाल एकदम से टॉप ऑफ द माइंड हो जाते हैं. इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि इन पे बार बार मतलब चर्चा हो, लोगों को भी अच्छा लगता है. तो जहां तक गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन की बात रहती है, ये एक तरीके का हेज रखते हैं कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है, ये आपको एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. पर वही रहता है जो चीज बहुत बढ़ रही होती है या मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी एक अलग लेवल पे होती है, उसको चेज ना करके ये जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है. तो 5-10% की एलोकेशन आप इन टाइप के एसेट क्लासेस में रख सकते हैं.
2: सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलोकेशन ऑफ एसेट्स एट सच ग्रेट डिटेल एंड यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसटीपी इन्वेस्टमेंट मोड एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर वेयर यू डोंट स्पेंड द मनी विच इज इजिली अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट एंड देन पार्क इट फॉर अ डेजिग्नेटेड टाइम एंड देन यूटिलाइज इट मोर fruitfully. So in the backdrop of this, why are investors increasingly choosing mutual funds over keeping all their savings in traditional avenues?
0: Right. So I guess that has something to do with how the mutual fund awareness has, let's say anybody or everywhere you just mention the word mutual fund sahi hai and everybody, let's say, watching cricket will also be able to understand because of the kind of Correct. Advertisements and awareness that is being created about a very important product. Plus, India as a market has always been tilted towards, so much tilted towards traditional asset classes that we have, we had stopped appreciating other asset classes beyond fixed income. So that is where mutual funds come in.
2: Sneha, we'll come back with that discussion. Meanwhile, we'll connect with our next caller from Delhi. Pradeep ji, swagat hai. Sawal poochhe.
3: Namaskar, Market Mantra team.
2: Ji, namaskar.
3: Madam, mere paas hai na, ek flexi cap, ek mid cap, ek small cap hai. Tino mein meri SIP chal rahi hai. So kya mujhe ek multi asset fund add karna chahiye? Aur dusra mera question lump sum ke bare mein hi hai, kyunki abhi mid cap aur small cap मतलब काफी ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई जो भी है. तो अगर मुझे 50,000 रुपए का लमसम करना है इस मंथ में, तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए?
0: जी प्रदीप जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में ऑलरेडी कर रहे हैं इन कैटेगरीज में, और आप मल्टी एसेट में जाएं या ना जाएं, तो मल्टी एसेट एक डिफरेंट तरीके की बॉल गेम हो जाती है इन कैटेगरीज से, जिनके नाम में ही पता चल जाता है ये

0: यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? अब मल्टी एसेट जैसा इसका नाम है, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है. इसका मैंडेट बस इतना रहता है कि एक टाइम पर मिनिमम 10% इनको तीन एसेट क्लासेस में रखना चाहिए. जनरली ये देखा गया ये फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं और इसमें डायनामिकली चेंज करते रहते हैं. तो मल्टी एसेट अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपोजर आपके पास आए, एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास रहे जो डायनामिकली चेंज करता रहे, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं. बट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जब आप फंड सिलेक्शन पे जाएं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हर फंड किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वी नो वट काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग इन टू. तो यहाँ पर थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेयर द फंड इज इन्वेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बेटर रहता है कि पूरे अच्छे से हम रिसर्च करें. बट Having said that, मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में ना होकर अगर आप अलग से डेट और अलग से गोल्ड भी लेते हैं तो भी आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं एज सच. और आपका जो दूसरा सवाल था कि लमसम कहाँ किया जाए, तो मेरा मानना ये है कि लमसम से कोई आपको एक मैसिव फायदा अगर हो रहा होगा कहीं पे एज ऑफ टूडे, आपको नहीं पता है उससे एक मैसिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ किसी एक ऐसी एसेट क्लास में डाल रहे हैं जहां पे जब चीजें हिलती हैं तो काफी बुरा हिल जाती हैं और जब बढ़ती हैं तो काफी बुरा बढ़ जाती हैं. तो एक वो जो एक कॉइन फ्लिप वाली प्रोबेबिलिटी रहती है ना, उसमें मैं थोड़ा झिझकती हूँ करने से. तो लमसम पे मेरा मतलब क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ तो मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि इक्विटी में मैं लमसम ना करूँ. अगर आप मार्केट टाइमिंग करके फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और आपको भरोसा है अपने आप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इसको थोड़े एक जो एक फन एलोकेशन होती है ना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो इम्पैक्ट ना करते हुए एक ऐसा अमाउंट लेना, ना ही वो आपके एक्सपेंसिस को इम्पैक्ट कर रही है, ना ही आपके पूरे बाकी के कोर को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर ही आप ये डिसीजन लेना.
1: जी, और देखते हैं अब कि FPIs का क्या हाल रहा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, FPI ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी जारी रखी है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाज़ार में 23,544 करोड़ रुपए का निवेश किया है. कुल निवेश में 14,118 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 9,426 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए. जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत हमारे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी का समर्थन मिला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक तरलता भी उभरते बाजारों की ओर वापस आ रही है. इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान देखने को मिला है. अगस्त में अब तक FPI ने जनरल लिमिट रूट के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों से 995 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि VRR से 83 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई. इसके उलट FAR से 852 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है.
2: एंड विनोद जॉइंस अस फ्रॉम दिल्ली. सवाल पूछे.
3: पूरी मार्केट ममता टीम को मेरी तरफ से नमस्कार.
2: जी नमस्कार.
3: मैं मैडम से ये जानना चाहूँगा कि मैं 2016-17 से अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, तो उसमें तरह तरह की मेरे पास स्कीम है, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन से परिवार के दबाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इधर उधर की एग्जाम्पल सेट करके मुझे बताते हैं कि आप कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो. बट मैं इस फैसले को लेकर झिझक रहा हूँ, तो मुझे मैम थोड़ा गाइड करेंगे कि यह कैसा फैसला रह रहे, क्या ये सही है कि वहाँ इक्विटी से कुछ यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्लीज बताएं.
0: जी विनोद जी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम इंडिया में जनरली एक फिक्स्ड इनकम मार्केट बन जाती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी मार्केट रही है जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले टाइम का ज़माना था, उसमें रियल एस्टेट को एक बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, इसीलिए शायद से आपकी फैमिली आपको वो कह रही है. अब इंडिया में जो रियल एस्टेट की एक सिचुएशन रहती है, उसमें एक तरीका ये देखा गया है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा. एज एन एसेट क्लास जो लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है, या फिर काफी

0: इतनी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है, तो मेरा मानना ये रहता है कि जब इक्विटी और रियल एस्टेट को कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं वो पैसा जब आपको चाहिए आप यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं अपना पैसे बचा कर. तो लिक्विडिटी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर देते हैं दैन रियल एस्टेट. बाकी अगर आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहते हैं तो अभी का टाइम एक ऐसा आया है जब रीट्स जो लिस्टेड रियल एस्टेट रहता है उनके एक्सपोजर पे आपको फंड्स आने वाले हैं. वैसा एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने देते हैं और हम तब देख सकते हैं कि अगर वो जो प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, तो एक चीज़ को ट्रैक करके आपको रिटर्न मिल जाता है जो एक रीट्स एज ए मार्केट का होता है. तो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल एरिया रह सकता है और आपको एट द सेम टाइम रियल एस्टेट का एक्सपोजर दे सकता है एक डिफरेंट तरीके से और एक लिक्विड तरीके से. तो जब इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है आप इसको देख सकते हैं.
1: जी, चेन्नई से काशीनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हेलो
1: जी काशीनाथ जी, सवाल पूछे.
2: यस, मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई. मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले अभी कुछ नाम नहीं लेते, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, जैसे कि आप पहले बोल देते थे जैसे कि धीरेंद्र सार ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिया, ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद.
3: सो काशीनाथ जी, ये सिर्फ एक पॉलिसी मैटर है, जस्ट अ चेंज इन द सिस्टम इन विच द प्रोग्राम इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड, नथिंग मोर देन दैट.
1: जी, और ऐसा ना लगे कि हम किसी खास कंपनी या उसको बढ़ावा दे रहे हैं.
3: और जैसा कि हम कहते हैं कि पैसा आपका है तो सोच और समझ भी फाइनल और डिसीजन भी फाइनली आपका ही होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. वरुण जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: मैम गुड इवनिंग.
3: गुड इवनिंग
4: मैम. मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा दो फंड ऐसा है जो जिसमें पिछले एक डेढ़ साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसी कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है. अब मेरा जो कैपिटल गेन्स अगर मैं स्विच करता हूँ काफी ज्यादा बनता है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन्स के बारे में ना सोच के क्या मुझे अभी दूसरा फंड में उसी कैटेगरी में स्विच करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसी कैटेगरी में?
0: वरुण जी, अज्यूमिंग कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि एक डेढ़ साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पे एक डिसीजन लेने के लिए. मैं मानती हूँ निराशाजनक जब आपको अपना पैसा दिख रहा होता है तो डाउट हमेशा आता है, बट आप देखें तो मतलब ये साल तो स्पेशली सेंसेक्स ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है. और जो सिचुएशन आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेम कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है, ऐसे करते करते आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हो जाएगा जब आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर पल हर समय आपको लगेगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टेड है उससे बेहतर फंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक हाइंडसाइट की बात हो जाती है. अब अगर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड बुरा है, तो उसका एक जवाब ये रहता है कि वक्त बताएगा और जब आपने इन्वेस्ट करा है तब उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए. तो बिल्कुल, जब भी हम ऐसे स्विचिंग कर रहे होते हैं हमें गेन्स और लोड्स का ध्यान रखना चाहिए. बट मेरे हिसाब से जो आप समय बता रहे हैं जितने होराइजन के लिए आप अभी इन्वेस्टेड रहे हैं, गिवन दैट ये वाला टाइम एज एन इंडियन मार्केट का भी काफ़ी फ्लैट टू फॉलिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना ये डिसीजन पे एक्ट ना करके थोड़ा समय और दीजिए, कम से कम लेट्स से 3 ईयर्स उस फंड को दीजिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसने एक ही मार्केट साइकिल देखी है जब से आपने इन्वेस्ट करा है. जबकि अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है कि डिफरेंट साइकिल्स में उसने कैसा प्रदर्शन करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि आप अपना ये डिसीजन अभी होल्ड करिए.
1: स्नेहा, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं कि एक ही कैटेगरी के एक फंड में अच्छा प्रदर्शन है और दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मान लीजिए अगर कितने के फर्क को हम माने कि हमें स्विच करने का फैसला लेना चाहिए, 0.2% का, 0.5% का, 1% का?
0: मेरा जो नजरिया रहता है इसको देखने का वो इतना सा रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था किसी फंड में और जो एक दूसरा फंड है, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या वो दोनों सेम स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लेट्स से मल्टी कैप कैटेगरी में भी जहां पे सेबी कहता है कि आप इतना इतना इतना पोर्शन लार्ज मिड स्मॉल में डाल सकते हैं,

0: वहां पे भी जो पोर्शन एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहां पे सब एक्टिव फंड मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं. तो सिर्फ नंबर देखकर तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितने नंबर पे हम स्विच कर लें, क्योंकि सबके लोड सबके एक्सपेंसेस अलग अलग रहेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्ट करा है. किसी ने एक ही साल में करा है तो उनका शॉर्ट टर्म गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, तो वो जो जितना डिफरेंशियल के लिए वो उधर जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर देना पड़ रहा है. जिसने थोड़े लंबे समय के लिए किया हुआ है तो ये सारे डिसीजंस काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं एक आम निवेशक के लिए. इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक टाइम दीजिए उस फंड को. बाकी अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है उस फंड से तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि आप सही एसेट क्लास में है भी या नहीं.
1: चलते हैं अगले कॉलर के पास. नोएडा से रविंदर हमारे साथ है. रविंदर स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
2: Yeah, good evening, madam. I have one question regarding the electronic gold receipts. How to trade in the Zerodha or Grow platform, whether it is tradable or any other way to trade?
0: So as far as my knowledge goes on the electronic gold receipts, they are very much available on the NSE platform. As in, they were introduced by NSE and they allow investors to buy and hold and sell physical gold digitally through a DMAT account. When compared to ETFs, I still feel that ETFs would be a better option since they let you stay away from physical gold, which also gets its, certain traits like storage costs and the anxiety that your physical gold is somewhere else and not near you. Is everything gets protected when you invest in a gold ETF, where the money is really not in terms of that physical gold, because in your hand it's just the units, while it's otherwise when it goes to EGRs. So EGRs may suit those who are wanting direct gold ownership, and while ETFs are ideal for investors seeking more liquid passive price exposure. But all said and done, if you want to trade in EGRs, then you can do so directly on NSE platform.
1: अपने सोने की बात की तो चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि इस हफ्ते सोने का हाल क्या रहा. कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आशंकाओं में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त जारी रही. अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड बायबैक को दोगुना करने के फैसले से लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे कीमती धातुओं की मांग में और वृद्धि हुई. एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.1% की वृद्धि हुई और ये 1,62,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.5% की वृद्धि हुई और ये 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई और ये $4,645.10 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सप्ताह भर में 6.8% की वृद्धि हुई और ये $69.53 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ.
3: All right, now let's connect with Ravi Narayan from Bilai. जी सवाल पूछे.
4: तो मेरा सवाल है कि मैं एक SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में जो है एक ही अच्छे भारत के लीड बैंक के पोर्टफोलियोज हैं सारे, और इक्विटी है और फोकस इक्विटी और मल्टी कैप वगैरह है, और करीब करीब 100% का इजाफा है. मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% का इजाफा है, तो क्या मुझे स्टडी फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो शुड आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग और मुझे इसका कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे फंड की कोई आवश्यकता नहीं है. कैन आई रिमेन इन द फंड्स?
0: Right. So, sir, if even if you're sitting at 100% gain and the situation of your life is that you don't need that money right away, then you might as well continue your investments in the selected funds, because selling them and booking profits would only mean that, that fund will, that money will eventually land in your bank account, and then the risk of consumption, like I was discussing earlier, kicks in. So it's a happy situation, and I believe since you're a long-term investor, you can continue investing in those funds.
1: एक बात इन्होंने और कही थी कि ये एक ही फंड हाउस के फंड्स हैं.
0: यहाँ पे जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगी, व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन, द डाइवर्सिफिकेशन एज अ प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर्स यू, बट एट एन इन्वेस्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन किक्स इन व्हेन यू आर स्प्रेडिंग योर मनी अक्रॉस डिफरेंट फंड्स, लाइक यू सेड फोकस्ड मल्टी कैप.

0: It also is important that you are investing in more than one AMC, because generally AMCs tend to follow a holistic or a one-stop investment philosophy at a fund house level, and then according to SEBI mandates, run the portfolio constructions as per SEBI mandates. If the market is not favoring that particular philosophy at one point in time, then definitely you can be in a situation where the AMC level risk kicks in. So definitely you should look to spread beyond that particular AMC.
1: All right, moving on to the next big story of the day. Tensions between Washington and Tehran escalated further after U.S. President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new U.S. territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on 18th of this month, after he previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. Rejecting Washington's territorial assertions, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei launched a sharp critic against the U.S. President's statements. He said the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the Strait itself. The rhetoric comes as the United States prepares to roll out additional economic measures targeting Tehran.
2: जी और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी से ईरान उन्हें दुश्मन मान लेगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को दिए गए एक साक्षात्कार में रज़ाई ने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के आर्थिक दबाव का समर्थन करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है.
1: एंड लेट्स आस्क जितेंद्र जी फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज.
3: हां, समय कम है तो शॉर्ट भी पूछ लेता हूं. जैसे मल्टी कैप फंड है, दो फंड हाउस के बीच में उनको कंपेयर करना रहा तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर रखते थे.
0: जितेंद्र जी, किसी भी कभी भी जब आप एक कैटेगरी में दो फंड्स का चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क्स को कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है हर मार्केट साइकिल में, जो कि रोलिंग रिटर्न से हम पता कर सकते हैं, जो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है. ये आपको बताता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में उस फंड ने कैसा प्रदर्शन करा है. बाकी मल्टी कैप में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप देखें कि वो जो बचा हुआ 25% रहता है जहां पे एक फंड मैनेजर अपनी अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या डिसीजन लेता आया है और आप कितना उस डिसीजन से ओके हैं. अगर आप लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप ऐसे फंड मैनेजर को देखिए. जनरली ये डायनामिक रहते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखें अगर, तो आपको ये चुनाव करने में मदद कर सकता है. दूसरा एक रहेगा कि आप ये देखें कि वो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो. ये कुछ चीज़ों को देख कर आप चुनाव कर सकते हैं.
1: All right, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week after a stronger than expected earnings season. Domestic investors are heading into a week packed with key market triggers including macroeconomic data, global events, US bond yield trends, foreign institutional investor flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the industrial production data and the latest forex reserve figures. Meanwhile, the primary market is set for another busy week with 5 new main board IPOs opening for subscription and 7 main board IPOs scheduled to make their stock market debut.
2: और आज वक्त इतना ही है. कुछ श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिनके कॉल्स हम आज शामिल नहीं कर पाए. स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
1: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 23,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन ऑगस्ट सो फार. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइज फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक एंड सिचुएशन इन वेस्ट एशिया रिमेन्स टेंस. And with that, we end today's Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं जिसे बार बार आप गुनगुनाना चाहते हैं कभी कभी कोई नगमा सिर्फ गीत नहीं होता बल्कि मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान बन जाता है आज का एहसास ही हमारा पुराना कोई ना कोई नाता जरूर जोड़ता है फिल्म चोरी चोरी का ये सदाबहार नगमा भी कुछ ऐसा ही है और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब तो आइए थोड़ी सी बात कर ले फिल्म चोरी चोरी की साल था 1956 का जब लता मंगेशकर जी और मन्ना डे जी की दिलकश आवाजों ने इस गीत में इश्क की नजाकत और मिलन की बेकरारी को बेहद खूबसूरती से पिरोया गीतकार हसरत जयपुरी के अल्फाज और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की मधुर धुन ने एक ऐसा गीत रचा जो हम सबके दिल में बस गया तो जरा आंखें बंद कीजिए बीते जमाने की उस हसीन शाम को महसूस कीजिए और दिल से कहिए मोहब्बत भले पुरानी हो जाए मगर उसके नगमे कभी पुराने नहीं होते बिल्कुल इस नगमे की तरह

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

परेशानी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मनमीत में, जिसमें हम सुनहरे दौर के बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हाजिर है। आज की महफिल में जिक्र अब उस गीत का जिसकी शरारत भरी धुन और नटखट अंदाज आज भी दिल को झूमने पर मजबूर कर देता है। साल था 1954 का और एक फिल्म आई थी आर पार। इस गीत को अपनी पुरकशिश और बुलंद आवाज से सजाया है शमशाद बेगम ने। गीत के बोल लिखे मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने, जबकि संगीत की कमान संभाली थी मशहूर और मारूफ संगीतकार ओपी नैयर ने। जरा सोचिए 70 साल से भी पुराना यह नगमा आज भी इतना ताजा क्यों लगता है? शायद इसलिए कि इसमें मोहब्बत की

यार कभी पार लगा तीरे नजर। शमशाद बेगम की बेहद खूबसूरत आवाज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आज की महफिल में बात अब उस नगमे की जिसने बेफिक्री, तन्हाई और आजाद मिजाज जिंदगी को एक ऐसी आवाज दी जिसे सुनकर हर दिल मुस्कुरा उठता है। साल था 1951 का और एक फिल्म आई थी आवारा, और आवारा फिल्म की जब बात चली है तो उसका बेहद खूबसूरत नगमा आपको याद तो आ ही गया होगा। इस गीत को अपनी दर्द भरी मगर बेहद दिलकश आवाज थी मुकेश साहब ने। गीतकार शैलेंद्र ने अपने सादे मगर गहरे अल्फाज में एक ऐसे इंसान की कैफियत बयां की जो दुनिया की बंदिशों से दूर अपनी राह पर चलना चाहता है। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इस एहसास को ऐसी पुरकशिश धुन दी कि गीत हमेशा के लिए अमर हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें मंजिल से ज्यादा सफर का मजा सिखाती है, और सफर बेहद खूबसूरत लगता है, और शायद यही इस नगमे का पैगाम भी है। अपनी राह चुनिए, मुस्कुराइए और फिक्र को पीछे छोड़िए, और इस बेहद खूबसूरत नगमे में खो जाइए।

में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में

0: वार्ताएं जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए आपके लिए हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, अमृत सरोवर और कैच द रेन। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल को सुरक्षित करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है, जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
4: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मंत्री शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान, ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले 2 वर्षों में

0: लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं कई बार गाद भर जाती है या थोड़ा जल स्तर कम हो जाता है, तो इनका संरक्षण किया जाना, लगातार इनमें जल भराव इसका मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब जल संचय जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का हम कहें संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाए और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गाद निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही जो हम अगर तालाबों की बात करें तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाए और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाए अपने जिले में।
1: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, जहाँ तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी धारणा है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है, हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए। और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहां के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए, बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियां होती रही। लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गाँव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है।
1: एक प्रशासक के तौर पे क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
2: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास 6-6, 8-8 बोर हैं, वो असफल हुए, और लगभग 3-4 क्रॉप का जिला है। तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ें, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभिष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि मानी मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़ के सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।

0: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। गजेंद्र जी, जल संरक्षण संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
1: देखिए, निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉन्ड को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फार्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से, और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है। तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते थे, अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहां पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता था उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
2: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हों, किसी में पानी नहीं निकल रहा है, उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं, दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं वहां उनको ही बोलें कि अपने अनुभव शेयर करें जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहां उसका उपयोग करें।
0: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
1: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं, मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
3: जी जी जी,
1: श्रोताओं को अगर सुना सकें तो बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर, जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है, एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है, हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है, लगभग 146 किलोमीटर का तट है जी जी। दोनों क्षेत्रों में मिला के उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपने सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गांव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के

0: से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फेंस करके सुरक्षित करें। कम्युनिटी को विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें दे के एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गांव में बनी जहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, खासकर अगर देहातों की बात करें क्योंकि शहर में की तुलना में वहां कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में डिस्पोजल के रूप में होता है वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है, तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज्यादा मजबूत करें वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी उपार्जन हो महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है, और उसमें न केवल जन सहयोग जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रहीं, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गांवों में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
1: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा आईएएस अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है, और इससे हमको और प्रेरणा मिली है जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जहां हम लोग निखाली कराई है हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं, और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं तो बहुत, एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पे कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं, तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसकी प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की, हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो हैं, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
1: बन सकता है।
2: तो हमारी योजना ये है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का

0: सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी, हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी की होती है। तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है, सभी मैं कहूँ इस तरह समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके, उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है। और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं, जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पे भी जल के संकट की स्थितियां आ गई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्या है जनता को झेलनी है, उसमें उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेके कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन, हमें अपने व्यक्तिगत, घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भी दिया गया कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया, तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है, तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। और जो बड़े लेवल के प्रयास है वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया है उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4,000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए, जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई। तो बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो, उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक, हम कहें जन आंदोलन जैसा विषय है, जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में प्रयास है कि हम ऐसे ही, मतलब लोगों को जब भी हम किसी जगह, जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार, सब मिलके जब काम करेंगे, तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता। यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत

0: यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियां हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पे रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो
1: जी।
0: तो जो स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहां जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा हूँ
2: जी। बिल्कुल श्रोताओं, अमृत सरोवर जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और श्री गजेंद्र सिंह नागेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। कैच द रेन, अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद।
4: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
5: नमस्कार।
4: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
5: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहाँ के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुआ कि मेरी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहाँ की जमीनों में भी है और वहाँ के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20 30 40 फीट पे पानी था, वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100 200 500 1000, कहीं कहीं जगह पे तो 2000 फीट पे गहराई पे चला गया। वहाँ के किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो उस विषय की एक प्रेरणा मिली कि इस समस्या का रोल बहुत समझा। तो हमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है, तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहाँ की धरती पथराड़ और डूंगराल है, बारिश गिरती है, लेकिन वहाँ जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाब है 80 से 90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आ रही और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू किया, लोगों को जोड़कर ये पानी हम कैसे बचा पाए।
4: दिलीप भाई, आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984 85

0: 1986 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
1: एक समय था, वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है। इस समय में क्या हालत थी कि वैसे कोई साधन भी नहीं थे तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय अब गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87 इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय में बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की। और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूती हुई, लोगों दो पैसा कमाने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए। तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गिर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने एक काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया, 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
0: तो भरत भाई, आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
2: पहली बार गिरगंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से। मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहा है इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वेरा कोई स्वर जन समुदाय का सबका भाग वाला इसे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सारथी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
0: भरत भाई, आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी आपने प्रेरित किया है। तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है और जो गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
2: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसी भी एक इनमें से एक शोध बनाई इनमें से। ये पेड़ का पेड़ फर्स्ट सब्जेक्ट, अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट रखाए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है। आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
1: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है। तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला, तो इसमें 2-3 चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहाँ की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में 2 चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना तो वहाँ पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहाँ पे पथराड़ और डूंगराल है। तो पानी स्टोरेज की बात है तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूलर की बात हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है, लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है ना वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए। उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी

0: ही हम बाहर पानी निकालने देंगे, लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज। हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं, जितने भी बोर है किसानों ने किया जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गाँव के आगेवानों का, 25 इंच बारिश 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला तो वहां के गांव के आगे वालों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चेम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गाँव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जोड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है। मैं बोलता हूँ अगर पानी में कोई 1,00,000 रुपया लगाता है ना तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा तो क्या होगा, बार बार एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है। पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है। किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ना तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी और चेक डैम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने उस गांव में खुशहाली आने देख। मैंने देखा, हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेक डैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गई तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा, तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया, जल संचय के काम गिरी के, जो जहाँ पर बोरवेल के मशीन नहीं आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं। वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरणा की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, पावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है, वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया, जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी, क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी और वो डुंगराल प्रदेश का गांव, अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासू पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। 30 साल हम गर्मी में गया था ने तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या का एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना तो पानी बचाना है। वो हमने नजदीक से देखा है।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि

0: आप अपने आसपास के लोगों को, आप कैसे जल संचय के कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं?
1: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, और आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े, ऐसी जो समझदारी की बात है। हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते, बचाने की कोशिश करने के साथ समझदारी सबको देते हैं।
0: हम जो सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है, तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
1: ज्योत से ज्योत जलाने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ। दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने क्या फायदा गैर फायदा होता है उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया, तो मैंने हमारी सोसाइटी जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से आगे आगे बात काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम चाहे रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय की कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
2: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे, तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का काम गवर्नमेंट में, तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की तो हम तो लोक भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे, लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की, और ये मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है, और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहाँ पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे, राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसकी काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए, ये चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है, और इस हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
0: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
2: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है, हम देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतने आगे बढ़ गए वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिर गंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम हमारे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए, जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूँ कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के सीएसआर एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाया जाए ना तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के

0: लीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर श्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है, और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जड़ संचय में कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बड़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जड़ संचय में लगाना है। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने क्या फर्क मिलेगा? जिस गांव आपके जड़ संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा, और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राज्य के आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है, तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मैं कह मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ने, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपये का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। अब विचार चला, मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील का एक सोरठा गांव है, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने ये बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुत्व दिया है जल संचय से जन भागीदारी, और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन, तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
2: कैच द रेन, बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे। लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो, या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो, हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार

0: अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने कल बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गदेरी नदी के तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। 22 अगस्त को भारी बारिश के कारण गुफाओं वाले इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल के जवान तेज बहाव के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के बाद उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सुरक्षित पाए जाने पर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to

और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1961 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्माण किया था ए नाडियाडवाला ने और इस फिल्म को निर्देशित किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

हरियाली और रास्ता मूवी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित और निर्मित किया था विजय भट्ट ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ये फिल्म मनोज कुमार की पहली हिट फिल्म थी और इस फिल्म में शंकर यानी मनोज कुमार, शोभना, माला सिन्हा और रीता यानी कि शशिकला के बीच एक त्रिकोणीय प्रेम को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। अगला गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

धूल का फूल फिल्म से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीत दत्ता नायक का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्माण किया था बी आर चोपड़ा ने और निर्देशन किया था यश चोपड़ा साहब ने। यश चोपड़ा की ये निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी, हालांकि नया दौर फिल्म में वो एज ए सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। सातवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में माला सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मुखराम शर्मा को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए नामांकित भी किया गया था। अगला गीत गीता दत्त और आशा जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:46 और

सुन रहे थे आप ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन सीवी श्रीधर ने किया था और इसकी पटकथा लिखी थी राज बलदेव राज ने। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने अभिनय किया था। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी। और अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कहके दे
1: दिल का हाल कहते रहना चाहिए क्योंकि दिल का हाल कहने से दिल हल्का रहता है। फिलहाल गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं।

0: और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। दो दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। सांची सब पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार और पार्सल जैसी सेवाएं मिलेंगी। लोग डाक और वित्तीय सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क नहीं देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
0: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसा बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर देता है। एक मेगा हर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर।

मंजू, वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात को महसूस करते हैं बातों के साथ और गीतों के साथ। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

जब मोरनी आधी रात को बोल रही है तो फिर हमें डर किस बात का। चलिए आइए और जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, साथ वो जो साथ साथ चले। अगला गीत आप ही के लिए।

इतनी छोटी सी बात हमें समझ नहीं आती कि दिल उसे देना है जो जान दे दे। कई बार तो इस छोटी सी बात को समझने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम इस जिंदगी की सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। जिंदगी में हम उसे ढूंढते हैं जिसे हम चाहते हैं, है ना, जबकि होना तो ये चाहिए कि तलाश उसकी हो जो हमें चाहता हो। क्या समझे? अगले गीत आप ही के लिए।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: जब प्यार में इतना खुल्लम खुल्ला ऐलान हो ही चुका है तो फिर क्या गिला और क्या शिकायत। मोहब्बत में शायद सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि किसी का हाथ थामकर हमें बस इतना कहना होता है कि ये सफर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अगर आपको प्यार में इजहार करना नहीं आता तो फिर ये अगला जो गीत है ट्रेनिंग के लिए आप ही के लिए।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: आई लाइक यू।
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा, खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और तुम गए तो कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। हाँ, ये सवाल इतनी मासूमियत से पूछा गया कि वो बेबाक बादल ठहर गया, वो उसी गली बरस गया, वो उसी शहर में बस गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:43 और 15 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

एक बात कहूँ आपसे, जुबान से कहीं ज़्यादा, जुबान से जो बातें कही जाती है उससे ज़्यादा भरोसेमंद बातें होती हैं आँखों की। क्या आपने कभी किसी की आँखों में अपने लिए वो प्यार देखा है? अगर देखा है तो फिर आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई और इंसान नहीं। अगला गीत आप ही के लिए।

जब दिल किसी एक इंसान को चुन लेता है तो फिर भीड़ में भी नजरें उसी इंसान को ढूंढने लगती है ना। लाख चेहरे सामने आते हैं लेकिन दिल बार बार कहता है कि उसी इंसान को ढूंढा जाए, उसी इंसान को तलाशा जाए। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दिल हजारों लोगों लाखों लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हो जाता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना बिसारिया। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

0: सम्मेलन में शामिल होंगे। दो दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरु में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे समावेशी राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसार के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, ensuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today.

3:10 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना चाहो भी तो दिल की खुशी चेहरे पर नजर आ ही जाती है। आंखें कुछ कहती हैं, मुस्कान कुछ राज खोल देती है, और फिर जमाना पूछता है आखिर माजरा क्या है। मोहब्बत जब दिल में दस्तक देती है तो उसकी आहट सिर्फ दो दिलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी खुशबू आसपास के माहौल में भी महसूस होने लगती है कुछ इस तरह।

इस खूबसूरत गीत को हमने लिया था फिल्म ब्रह्मचारी से और आवाजें थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों कहते हैं प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसे वक्त की कसौटी पर परखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा प्यार हो तो वक्त बीतता जाता है मगर एहसास वही ठहरा रहता है। 60 के दशक का एक ऐसा ही बेहद प्यारा सा रोमांटिक नगमा है जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की है। इसी खूबसूरत मासूम और अटूट भावना को सुर देती है इस गीत के जो बोल हैं वो इतने खूबसूरत हैं और शंकर जयकिशन का संगीत इसे और भी खूबसूरत बना देता है। अब जब बात ही कर रहे हैं इस गीत की तो हम नाम भी बता देते हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अप्रैल फूल से।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हमराही कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत में एक खूबसूरत पल वो होता है जब दिल किसी को अपना मान ले और फिर दुनिया की कोई भी दूरी उस एहसास को कम नहीं कर सकती। कभी किसी की मुस्कान दिल को अपना बना लेती है तो कभी उसकी आवाज़ यादों में बस जाती है और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। तो आइए मोहब्बत के इसी मासूम और दिलकश एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म आई मिलन की बेला का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, कभी कभी किसी का साथ इतना सुकून देता है कि दुनिया की सारी हलचल जैसे कुछ पल के लिए थम जाती है। पास होने का एहसास, आंखों की खामोश बातें और दिल में उठती एक मीठी सी लहर, यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है। कुछ रिश्तों में शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि एहसास खुद अपनी कहानी कहने लगते हैं, और जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पल किसी खूबसूरत गीत की तरह यादों में बस जाते हैं। तो आइए प्यार के उसी नर्म और खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म वक्त का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 3:33 और 5 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनकी धुन में जैसे कोई पुरानी याद धीरे से दस्तक देती है और दिल अनायास ही मुस्कुरा जाता है। कहते हैं ना, जब दिल में कोई बात हो तो जुबां खामोश हो, तो कभी कभी गीत वही बात कह जाते हैं जो हम खुद नहीं कह पाते। तो आइए, यादों और मोहब्बत की इसी मधुर धुन में खो जाते हैं। सुनते हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज सुमन कल्याणपुर और मुकेश की है।

0: कभी कोई तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो किसी की याद बनकर दिल में उतर जाती है। फिर वक्त गुजरता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो चेहरा वैसा ही महफूज रहता है। कुछ रिश्ते पास रहकर भी अधूरे होते हैं और कुछ दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब होते हैं। यादों की यही खूबसूरती है, इन पर वक्त का ना असर होता है ना दूरी का। आइए सुनते हैं माया फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: तेरे दिल में जिस दिल

दोस्तों मोहब्बत की यही तो खूबसूरती है कि किसी का होना हमारी नजरों को भी एक नया नजरिया दे देता है फिर हर खुशी में उसी की झलक और हर धुन में उसी का एहसास सुनाई देने लगता है तो आइए इसी खूबसूरत एहसास और दिलकश अंदाज के साथ सुनते हैं फिल्म बेटी बेटे का गीत आवाज मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की

दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दूरियां भी मोहब्बत को कम नहीं कर पाती, बस एक आवाज और दिल को लगता है जैसे कोई बेहद अपना करीब करीब आ गया हो। मोहब्बत में इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है जब यकीन हो कि सामने वाला आपको याद करता है, आपकी आवाज सुनना चाहता है और बस एक पुकार की देर होती है। इसी प्यारे एहसास को अपने सुर में समेटे हुए है हमारा कार्यक्रम का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रोफेसर से।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान हमें इतना अपना लगने लगता है कि उसके बिना भविष्य की कल्पना भी अधूरी सी लगती है। लेकिन हर चाहत मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते दिल में उतरते हैं मगर किस्मत की किताब में उनका नाम नहीं लिखा होता। हम उन्हें भूलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन यादें कहाँ इतनी आसानी से हमारा साथ छोड़ती हैं। शायद प्यार का एक सच ये भी है कि हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी दिल में हमेशा पूरी लगती हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। ये बेहद खूबसूरत और दर्द भरा सा नगमा है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग और आवाजें सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का

0: नवीनीकरण किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरु में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टल वीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इससे पहले दिन में नीदरलैंड ने चीन को 4-1 से हराकर बाहर कर दिया था। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and exchange perspectives on regional and

4:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम अरुणिमा का, और आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत करती हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना बिजारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ मुलाकातें हमें सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। किसी की निगाहों में मिली उम्मीद, किसी की बातों में मिला भरोसा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे सफ़र को खूबसूरत बना देती हैं। लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम किसी याद को अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बना लें। जो अच्छा मिला उसके लिए शुक्रिया, और जो छूट गया उसके मुस्कुरा कर विदा कर दिया। तो आइए दिल की भावनाओं को हौसले की रोशनी में महसूस करते हैं फिल्म प्रेम पर्वत के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

मोड़ पर खड़ा करके रख देती है जहां लगता है अब शायद कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला जिंदा है तो कहानी अभी बाकी है। जिंदगी किसी दिन एक दिन की मोहताज नहीं होती। आज मुश्किल है तो कल आसान हो सकती है, आज रास्ता अनजान है तो कल मंजिल सामने हो सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की और हर सुबह एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर से आगे निकल जाता है उसी दिन जिंदगी उसके नाम से मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसी उम्मीद, आत्मविश्वास और जीत के जज्बे को महसूस कराता है फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी तभी पूरी होगी जब हमारी हर चाहत पूरी हो जाएगी, लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती इसी अधूरेपन में छिपी है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, किसी को मंजिल मिलती है तो रास्ता मुश्किल होता है, किसी के पास रिश्ते होते हैं तो वक्त कम पड़ जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी अधूरी है। जो मिला है उसकी कद्र करना और जो नहीं मिला उसके लिए उम्मीद बनाए रखना, ये भी तो जीने का हुनर है। कभी कोई कमी हमें मजबूत बनाती है, कभी कोई अधूरा सपना हमें आगे बढ़ने की वजह देता है। इसलिए अपनी कहानी की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपकी राह, आपकी कहानी और आपकी रफ्तार सब आपकी अपनी ही हैं।

है रास्ते बदलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हर रुकावट का मतलब हार नहीं होता। कई बार वही मुश्किलें हमें उस इंसान में बदल रही होती हैं जो हम बनना चाहते हैं। बस फिर एक दिन दिल कहता है अब डरना नहीं, अब पीछे नहीं हटना, जो भी है सामने है और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी से शिकायतें बहुत की, अब जिंदगी को गले लगाने की बारी है। नए सपने हैं, नई उम्मीदें हैं और कदमों में फिर वही भरोसा है कि मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ता तय किया जा सकता है।

जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती, कभी खुशियां देती है, कभी चुनौतियां सामने रख देती हैं। लेकिन शायद जिंदगी को खूबसूरत बनाने का राज यही है कि हम हर रंग को स्वीकार करना सीखें। मुश्किल दिनों से घबराए मत, ये दिन हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। गिरे तो संभलिए, थके तो थोड़ा ठहरिए, लेकिन अपने सपनों से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि जिंदगी से लड़ते रहने के बजाय कभी कभी उसे पूरे दिल से लगाना भी जरूरी होता है। जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसके लिए उम्मीद, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास।

4:40 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, जिंदगी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में उतर जाते हैं। किसी की एक अच्छी बात, एक सच्ची मुस्कान या हौसले से कही गई छोटी सी बात कभी-कभी इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अपनी बातों में मिठास रखिए और किसी के सपनों को छोटा करने के बजाय उन्हें उड़ान देने वाले शब्द दीजिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो किसी का दिन बदल सकते हैं, किसी का आत्मविश्वास लौटा सकते हैं।

जिंदगी हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं होती, कभी कभी छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी उपलब्धियां और कुछ खूबसूरत पल मिलकर इसे खास बनाते हैं। हम अक्सर उस बड़ी मंजिल का इंतजार करते रहते हैं जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि सफर में मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव ही हमें मंजिल के लिए तैयार करते हैं। इसलिए आज जो मिला है उसे महसूस कीजिए, छोटी जीत का जश्न मनाइए, अपने प्रयासों की कद्र कीजिए और हर नए दिन को एक नए मौके की तरह स्वीकार कीजिए।

दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता। कहीं धूप है, कहीं छांव, कहीं उम्मीदें हैं, तो कहीं ऐसे मोड़ भी आते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। लेकिन हर मोड़ अपने साथ कुछ नया सिखाकर जरूर जाता है। इसलिए बीते हुए कल को बोझ बनाकर मत रखिए। जो अच्छा था उसे यादों में संजोइए, जो मुश्किल था उससे सीख लीजिए, और फिर पूरे भरोसे के साथ आज को जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जीवन की असली खूबसूरती मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करते हुए आगे बढ़ने में है।

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि हर इंसान के भीतर एक अधूरा सा सपना, एक अनकहा सा गीत और किसी अपनी की तलाश छिपी होती है। कभी वो ख्वाबों में मिलता है तो कभी ख्यालों में, और जब ये एहसास हकीकत का रूप लेता है तो जिंदगी जैसे एक नया अर्थ पा लेती है। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ डैडी फिल्म का ये गीत, तलत अजीज और दिलराज कौर की आवाज़ों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 तारीख तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सांची उप डाकघर का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के डाकघर आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस डाकघर का नवीनीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी में तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस

0: एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। सूचना मिलते ही बचाव दल घने जंगल और दुर्गम इलाके से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचा। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई startup से जुड़ जाओ, भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Musunuru village in Eluru district of Andhra Pradesh today. During his visit, the Vice President will launch India's first non-genetically modified organism, GMO, high expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru. He will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders and other participants. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from today till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both nations bring to their special strategic and global partnership and comes at a time when India and Japan are looking to significantly deepen trade and investment ties. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and

सुबह के 5:11 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से मैं अर्चना बिसारिया आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से।

0: गम का फसाना।
1: दोस्तों ये गीत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पंचली से।
2: अच्छा जी।
0: एक बहाना बन गया अच्छा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी में आइए अब आपको सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने।